0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में?

0: मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात ये है कि हम समुदाय से लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, आप गामा 2 ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सर, गगन जी, थैंक्स अ लॉट।
5: काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: थैंक यू गगन जी।
5: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
6: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे पिता, जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो वो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे, आन आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं। उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
5: जी,
6: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर। थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान MS इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में NCC ज्वाइन की। 11th में NCC में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मैनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
5: जी,
6: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ NCC। 94 में ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में, और एंड अवार्डेड बाय कर्नल एसन थ्रॉड, जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे। इट वाज नेशनल लेवल का ये
5: कॉम्पिटिशन था
6: सर।
5: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई।
6: यस सर,
5: ये आपको विरासत में मिला है।
6: Yes,
5: क्योंकि
6: sir,
5: आपके
6: yes,
5: फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे। yes, उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला, जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा। जी जी,
6: जैसा कि नाम में ही है, ऑल इंडिया ट्रैक 1994, आई गॉट NCC सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर, 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो,
5: आप गाते थे?
6: नहीं सर, देशभक्ति के गीत। और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी।
5: ओके ओके ओके, मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
6: सर,
5: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही। उसके बाद
6: फिर संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में, अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर।
5: जी जी।
6: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ।
5: ओ ग्रेट,
6: ये दिल मांगे मोर।
5: तो
6: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर, उसमें था ये दिल मांगे मोर तेरा ही प्यार, ये दिल

0: दार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा,
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी इस वो भी काफी चला था। इस दौरान स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के नॉन इन्वेसिव है।
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था।
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर,
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर
0: बात और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए?
0: Definitely sir. In collaboration by Capri Institute of Manual Therapy Delhi and SPSPG Institute Dehradun ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मोलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर बट

0: should be sustained.
1: क्या
0: बात? Ah, follow the treatment plan. Ah, back the movement plan.
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है. और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे जरूर. यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलें. कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो.
0: नजर

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशाद 90.8 एफएम पर। ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनोशाद 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशाद 90.8 एफएम।
2: नजर वो जो दुश्मन

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वाकई दिल को सुकून देते हैं ये गाने। इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है,
0: प्राणायाम ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट ग्रेट,
1: कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट करती थी, और इसी दौरान जहां जहां मैं सीखने भी गया तो वहां से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 ईयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ। उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह, और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर फिर, और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य अभी
0: इस तरह। क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहा तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: और आज आप रेडियो पर हैं, कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा
0: जी।
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है, ग्रेटर नोएडा का कार्निवल होता है, उसमें फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर, ये
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को

0: सुनवाना चाहते हैं और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नील नील अंबर पर
0: टन टन
1: चांद जब आए।
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं उस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है, बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव में सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके
1: okay. मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप उस समय देते हैं, और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं, साथ ही साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट। बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला है, शायद ही कोई फील्ड आपका बचा हो।
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, उधर साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, उधर ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफी सपोर्ट रहती है। एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
0: ओके okay. और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। अजी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियां आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ।
0: ओके
2: हाँ, तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स।
0: अच्छा तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट है?
2: अभी 10th।
0: अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी का मास्कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है। मास्कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है, अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियस है कि लोग देख ही रहे हैं, और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात से यही कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा जरूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, फिर लगता है कि नहीं यार इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए तो उसके बाद हम कुछ जरूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है। आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका?
3: My name is Aryan.
0: Aryan, Aryan, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है, कहाँ ले जाते हैं आप? हा?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं,
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड,
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है।
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है। मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा।
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है पापा को।
0: चलिए वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा। तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन,
0: कोई बात नहीं जो भी। हाँ प्लीज सुनाइए।
1: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ।

0: जिंदगी
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया, रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो हाँ अमिताभ बच्चन साहब और शान। फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनो श्रोता 90.8 FM पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, चूंकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का जो एक यूँ कहें कि कंपटीशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियां भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कॉम्पटिशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इफ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते ही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके, कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने मन की बात।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टू लाइन्स बीच में मैं फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि
0: किस नाम से है वो फेसबुक पेज?
1: नरेंद्र सॉन्ग्स, नरेंद्र सॉन्ग्स के नाम से है। तो सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा वो। और ये मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ अभी ऑन फ्रेंडशिप
0: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं, इजाजत लेता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ ही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन जब आप ऑन रोड सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं तो यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करिए, यानी कि आप सुरक्षित पहुंचे, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुल मिलाकर ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करने की बहुत जरूरत है। क्या है खास इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हैव अ नाइस डे।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक, यू ऑल लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेगा, वरना दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत ज्यादा हो सकती हैं। बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए अगर आपने ड्राइविंग की तो 1000 रुपए का फाइन है। बिना वैध लाइसेंस गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो 5000 रुपए का फाइन है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप करें तो 5000 रुपए का फाइन अर्थात दंड आपको देना होगा। और शराब पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बोले तो ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का आपका चालान कट सकता है। और जो आपके पेपर्स हैं, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि डिजिटल दस्तावेज मान्य हैं और इसे आप डिजिटल लॉकर में या एम परिवहन ऐप में रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास आपके जो कागज हैं वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में क्या खास हुआ है। अगर आपके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके बारे में जानेंगे जरूर। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
7: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

एक बार पुनः आप सबका स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम जनाबे अली, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM, इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, जब सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जिक्र करते हैं तो समुदाय के लोगों द्वारा समुदाय के लोगों के लिए ये चलाया जाता है, जहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं विद इंफोटेनमेंट अर्थात लेटेस्ट अपडेट के साथ। ऐसी कुछ अपडेट दिल्ली एनसीआर में निकल कर हमारे सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर 2026 से कड़े प्रदूषण नियम अर्थात ग्रैप लागू हो गए। इसके अंतर्गत करना क्या है कि बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट बोले तो PUCC के वाहनों पर 10,000 का भारी जुर्माना और ईंधन फ्यूल न मिलने की सख्त पाबंदी है। इस बात को नजरअंदाज न करेगा वरना दिक्कत है, परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती है। यदि आप चालान को गलत मानकर कोर्ट या अथॉरिटी में चुनौती देते हैं तो पहले आपको चालान राशि का 50% एडवांस जमा करना होगा और ई चालान जारी होने के बाद उसे 45 दिन तक भीतर भरना अनिवार्य है, यानी कि 45 दिनों के भीतर आपको भरना अनिवार्य है। और अगर कोई वाहन चालक एक कैलेंडर वर्ष में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित अर्थात रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि आज भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत 2026 के अंतर्गत कुछ खास बातें उनके बारे में बातें की जाए, तो यही बातें मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन सारी बातें खास हैं तो कुल मिलाकर यातायात के नियमों का अच्छी तरीके से पालन करिए क्योंकि someone is waiting for you at your home, at your office. So don't go anywhere. Stay tuned on Surya Sharda 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जाको राखे साइया मार सके न कोई, और कहते हैं कि हीरो गिरी किसी की जान बचाने में है। कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन, आपके साथ एक छोटी सी कहानी शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि दुबई से जो इसराइल फ्लाइट जा रही थी जिसका नाम था फ्लाइट दुबई, में एक हादसा होता है जिसके बाद एक कप्तान की वजह से, कैप्टन की वजह से, पायलट की वजह से उस हादसे को टाला जाता है। और उस घटना का असर ये रहा कि जो प्लेन स्मूथ चल रहा था, अपनी लय में चल रहा था, एक झटके में, एक अचानक हुए हमले की वजह से 17,400 फीट वो नीचे आ गया। लेकिन पायलट जो कि नाम था उनका कैप्टन स्मिथ मछार, की समझदारी की वजह से उस हादसे को टाला गया। और ये बड़ा हादसा हो सकता था लाइक 9/11 की तरह। सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और विमान हाईजैक का कोड उस कप्तान ने आगे भेजा, और उसके बाद इसराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स हैं अब हाल फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं अगले आदेश तक, क्योंकि एक मुद्दा है, एक चेकिंग का मुद्दा है कि विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और इसी बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी की जमकर सराहना की है और उनको सच्चा हीरो बताया है। और ये सच बात है कि अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो निश्चित तौर पर खुद ब खुद दुआएं निकलती हैं। सोचिए कितनी यात्रियों की जान जा सकती थी और उन लोगों की जान बचाने के बाद कितनी दिली दुआएं, शुभकामनाएं मिल रही हैं। कैप्टन साहब को भी सुरोशादा 90.8 FM की तरफ से दिल से सलाम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरोशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: बस आपको मुझे हम सबको दिल से काम करना है, बाकी का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रशासन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी वक्त आने पर दिल से सलाम करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं अगर आपके साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन स्मिथ मछार की। जी हां, फ्लाई दुबई विमान में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट। बड़े गर्व के साथ हम बात कर रहे हैं भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की। जी हां, उन्होंने असाधारण बहादुरी की वजह से यूं समझ लीजिए कि कई लोगों की जान बचा पाए, धैर्य से काम लिया, समझदारी से काम लिया और टेंशन अपने आसपास नहीं रखने दी, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। अब जब मैं काम की बात कर रहा हूँ, सराहना की बात कर रहा हूँ, तो सरकारें क्या कह रही हैं, भारत सरकार क्या कह रही है, इसराइल क्या कह रहा है, सुनने में आ रहा है कि विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड। गुजरात गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर कैप्टन स्मिथ मछार को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है और वही इसराइल सोच रहा है कि सर्वोच्च नागरिक का सम्मान इनको दिया जाए। वही भारत सरकार भी सोच रही है कि कैप्टन स्मिथ साहब को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दे सकती है। जैसे 1986 के विमान हाईजैक में बहादुरी के लिए, पराक्रम के लिए नीरजा भनोट को दिया गया था। खैर, इस पर अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, तो ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन फिर भी वो अवार्ड के हकदार हैं और वो अवार्ड लोगों के दिल में बस चुका है, वो जो इनको दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम भी इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, जल्दी हेल्थ की कामना करते हैं कि जल्दी ये स्वस्थ हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, में हूं अगर आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
5: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। ए बाबू, हाँ बोल दे तेलुगु।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हैप्पी बर्थडे भाई, जिनका जन्मदिन है, जिनकी आज जयंती है, उनको बहुत सारी दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का है। सो माय डियर लिसनर्स, क्या आपको पता है कि ये नारा कब दिया गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के सैनिकों अर्थात बोले तो जवानों के साहस और अन्नदाताओं यानी कि किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उनका जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ आज हम जिक्र कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर। यूएन ने इस दिन की घोषणा की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं बापूजी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म आज के दिन हुआ था। और आज के दिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सफाई कार्यक्रम और गांधी आश्रमों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मुझे लगता है कि गांधी जी का उद्देश्य यही था कि अमन हो, सुकून हो और हम सब साफ सफाई से रहें। हमेशा उन्होंने साफ सफाई पर जोर दिया है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। अगर हम ये सब सोच लें, जान लें, समझ लें तो तमाम बीमारियों से हम अपने आप को बचाकर रख पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ का ख्याल रखने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। कीप लिसनिंग सुनो शारदा 90.8 FM। और आप फीडबैक देना ना भूलिएगा, 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को आप लॉगिन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

फल और सब्जी घर पर ही उगावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, ये अभियान।

नियम संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं

0: मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे शशि कपूर। दोस्तों, अब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दे पर चर्चा ना हो ऐसा हम होने नहीं दे सकते, जिसके लिए इस एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को और साथ ही एक पोषण विशेषज्ञ को, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेके, जिसका मुख्य विषय होगा एनीमिया। तो सबसे पहले सेहतिया भैया जी, आपका सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से।
1: दिल की गहराइयों से मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सेहतिया भैया, कल मैंने ना एक पत्रिका में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर अचंभित रह गया, इतने छोटे बच्चों में भी खून की कमी।
1: और ये सच्चाई या परेशान करने आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। आपको पता है 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% यानी कि 59% से ज्यादा एनीमिक है, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां

0: और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी कि 52% यानी आधी से ज्यादा महिलाएं अनीमिया की शिकार है।
1: और 5 से 9 साल के बच्चों का क्या, क्या उनके लिए कोई जानकारी है आपके पास?
0: जी हाँ, बिल्कुल जानकारी है। NFHS में इस उम्र के बच्चों का डेटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% यानी कि 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं।
1: मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं?
0: जी हाँ, 15 से 49 वर्ष के करीब 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% से भी एनीमिक पाए गए हैं। यानी ये एक समाज भर की समस्या है।
1: और अब सेहतिया भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश में एनीमिया के आंकड़ों के बारे में।
0: भाई कपूर साहब, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। 67% बच्चे, 50.6% गर्भवती महिलाएं और 45.9% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में ये 50.4%, किशोरियों में 52.9% और पुरुषों में 22.2%, यानी कि एक एज का आंकड़ा भी दिया हुआ है। वो आंकड़ा है 15 से लेकर 49 साल, और 28.9% ये आंकड़ा है 15 से लेकर 19 साल का।
1: सियतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्दी ही एनीमिया को लेकर डॉक्टर अमर निधि से मिली थी, क्यों ना हम एक एक्सपर्ट की दृष्टिकोण को भी जानें।
0: अरे नेकी और पूछ, अब बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है। बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, आइए सुनते हैं ये खास जानकारी डॉक्टर के माध्यम से।
2: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है, और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
2: हमारा पहला सवाल है कि एनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
3: ये बहुत ही अहम सवाल है। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लोह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना, या कुछ पुरानी बीमारियां भी एनीमिया का कारण हो सकती हैं।
2: क्या एनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि एनीमिया है?
3: एनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को एनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
2: तो क्या एनीमिया को रोकने या एनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
3: जी हाँ, बिल्कुल। एनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की एनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
2: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
3: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय-समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
2: मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
3: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है, और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में, किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
4: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
3: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं, और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
2: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है?
3: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है, तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो, अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं, तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
2: तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
3: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
4: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
3: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
2: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
3: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन जरूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए, तो खून की कमी का खतरा, यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है, और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
2: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
3: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती, इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सुनाना दोस्तों, एनीमिया क्या है और क्यों होता है? तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सिहतिया जी से पूछते हैं, आखिर उनकी भतीजी आरती दीदी को क्या हुआ था? मुझे पता लगा था उनको काफी खून की कमी थी और उनके प्रसव में काफी दिक्कत हुई थी।
0: क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि आरती कितनी खाने पीने की शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या ही फायदा होता जब वो उसका खाना पौष्टिक ना होता।
1: क्या भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको किस चीज की दिक्कत?
0: यही चाउमीन और मोमो खा खा के उसको लगता था उसका सारा पोषण पूरा हो रहा है। पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीज खा खा के उसका ब्लड प्रेशर अलग बढ़ा, ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। 6 महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अब अगर पोषण का ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी।
1: तो आपकी भतीजी है, समझदार होगी, ख्याल तो रख लिया होगा।
0: भाई इसी चीज का तो दुख है कपूर साहब, मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टर की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कतें आई ये बस या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या आरती।
1: पर फिर भी सेहतिया भैया बताएं तो सही, ऐसा क्या हो गया?
0: भाई होना क्या था कपूर साहब, प्रसव के समय जहाँ खून की मात्रा अधिकतम होती है, दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने घर की महिलाओं का ध्यान दीजिएगा जब इस समय वो आए या इस समय से जब वो गुजरे, तो खून की कमी न होने पाए। फिर रिपीट करना चाहूंगा कि प्रसव के समय जहाँ खून की मात्रा अधिकतम होती है, अधिकतम होनी चाहिए, उसको जब भी कमी थी धर्मवीर भैया और मुझे एक एक यूनिट खून देना पड़ा, जब जाके उसकी बेटी का जन्म हो पाया कपूर साहब। पर सिर्फ आरती पर असर नहीं पड़ा, अब उस आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली खून की कमी से ग्रसित है।
1: ओहो, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। तो अब कैसी हैं आरती दीदी?
0: भाई कुशल क्षेम जानना हम सबका अधिकार है और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो आरती दीदी कैसी हैं। तो शुक्रिया कपूर साहब, आपने ये सवाल मेरे सामने किया। तो दोस्तों अब तो काफी बेहतर है, हमारा जमाई काफी समझदार भी है, उसने डॉक्टर से सलाह ली और जिस तरह से डॉक्टर ने खाने पीने का बोला है वैसे वैसे ध्यान रख रहा है। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टाइम से पौष्टिक आहार और दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहा है ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी।
1: ये तो अच्छी बात है काफी। आरती दीदी को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया भी उसे झेल सकती है। अच्छा सियतिया भैया, अब ये बताइए, क्या कोई सरकार का अभियान है इस पर?
0: अरे सरकार बहुत सक्रिय है, पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही हैं, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है।
1: सिहतिया भैया, मुझे याद है भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत AMB अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को कम करना है।
0: इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कॉर्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है।
1: सियतिया भैया, ये तो बहुत ही व्यवस्थित योजना है, और क्या कोई और कार्यक्रम भी है?
0: हाँ आरजे साहब, और भी कई योजनाएं जिनका यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा और बड़ी बारीकी से बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि शॉर्ट में कहा जाता है इसको RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर यानी लड़के लड़कियों पर रहता है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर। इसमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में कहा जाता है RBSK। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें अनीमिया भी शामिल है, स्कूल और आंगनवाड़ी के जरिए किया जाता है। अगला पॉइंट है स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम, शॉर्ट में कहा जाता है SHWP। ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें अनीमिया की जानकारी भी शामिल है। अब बात करते हैं ICDS, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। बात आती है पोषण अभियान और पोषण 2 अभियान की। ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है दोस्तों, और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। बात करते हैं PM पोषण योजना, भाई ये बहुत अच्छी योजना है। ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है, जिससे अनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सिहतिया भैया, इतनी सरलता से और फिर भी इतनी गहराई से ये सब जानकारी देने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
0: भाई मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप जब स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होगी तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी, खेत में काम करने वाली महिला अगर चक्कर खा जाए तो फसल कैसे काटेगी। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने, संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़े मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा।
0: बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, और इसकी शुरुआत होती है सही खून से।
1: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी हुई जानकारी और सुझावों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए, आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है, और साथ ही जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से एनीमिया को हराया जा सकता है।
0: भाई बिल्कुल आरजे साहब, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है, घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। तब तक अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए, और साथ ही साथ हमारे साथ शपथ दोहराइए, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की, जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसान मित्रों, वर्तमान समय में भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकताओं का लगभग 57% आयात करता है। ऐसे में मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर लगभग 28% तक लाना है। इस मिशन के अंतर्गत उच्च उपज वाले तेल सामग्री वाले बीज किस्मों को अपनाने को बढ़ावा देना, चावल की परती भूमि में खेती का विस्तार करना तथा अंतर फसल को बढ़ावा देना शामिल है। इस मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची साथी पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना शुरू की जाएगी। ये राज्यों को सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO और सरकारी या निजी बीज निगमों सहित बीज उत्पादन एजेंसियों को साथ लाने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त 347 जिलों में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जो लगभग 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। इन क्लस्टरों का प्रबंधन FPO, सहकारी समितियों और सार्वजनिक या निजी संस्थाओं जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाएगा। इन क्लस्टरों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण और मौसम एवं कीट प्रबंधन पर सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मिशन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से खाद्य तेलों के लिए अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत जीनोम एडिटिंग जैसी अत्याधुनिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। साथ ही इस मिशन के तहत नवाचार एवं तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और तिलहन की खेती के तहत अधिक क्षेत्रों को लाने पर विचार किया जाएगा। किसान मित्रों, ये मिशन घरेलू तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा, जिससे आयात में कमी आने के साथ ही हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी होगा। साथ ही इस मिशन से कम जल के उपयोग, बेहतर मृदा स्वास्थ्य और परती क्षेत्रों के उपयोग से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, समन्वित कृषि प्रणाली खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें खेती के अलग अलग प्रकारों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल और सब्जी उत्पादन, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन, दूध और खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही वानिकी का इस तरह से समायोजन किया जाता है कि ये सभी एक दूसरे के पूरक बनकर आप किसान भाइयों को लगातार आमदनी देते रहे। इस तरह की खेती में संसाधनों का पूरा उपयोग होता है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत समन्वित कृषि पद्धति को अपनाने के लिए सहायता भी दी जाती है, जैसे पशु आधारित कृषि पद्धति, उद्यान की आधारित पद्धति और पेड़ आधारित पद्धति। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए भी राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। साथ ही खेती को लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु सहनशील बनाना भी इसका उद्देश्य है। आप किसान भाइयों की आय बढ़ाना, मिट्टी और नमी का संरक्षण, पानी का संरक्षण इसके उद्देश्यों में शामिल है। वैसे भी किसान मित्रों, लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा दिया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है, लेकिन इस समस्या का समाधान अब हो गया है। आप अपने खेतों में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है।

और भूमि में पहले से मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस आदि पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसीलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं और अच्छी पैदावार लेकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं कोशिंदर खदाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कोशिंदर खदाना से ये रागनी। किसान मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि किसान उत्पादक संगठन यानी FPO आपके द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना है, साथ ही फसल में उत्पादन लागत कम करना और फसल की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था होती है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से आप किसान भाइयों को स्केल की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। हमारे सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आप किसानों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये संगठन हमारे छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है। किसान मित्रों, FPO हमारे छोटे किसान बहन भाइयों को एक साथ जोड़ते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम वैसला।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से दुश्म दुश्म लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जहाँ जहाँ पानी होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: रंजना, और रंजना।
5: जी जी जी, आ गई मैं, आ गई। ये लीजिए पानी। आज आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: हाँ ठीक है।
5: मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
4: रुको, इसकी जरूरत नहीं है, ये लो।
5: ये क्या है?
4: तुम्हारा इनाम।
5: मेरा इनाम? क्या है इसमें?
4: अब देखो तो सही, कैसा लगा इनाम, पसंद नहीं आया क्या?
5: अभी ये क्या है? ये तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या है ये?
4: दिख नहीं रहा अंधी, डिवोर्स पेपर्स हैं।
5: आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना अभी? प्लीज बोलिए ना, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप ऐसा मत करिए।
4: ये तलाक के पेपर्स हैं।
5: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज मजाक मत करिए,
4: निकल यहाँ से।
5: नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, अभी नहीं।
4: निकल जाए यहाँ से, ये पेपर उठाओ, निकल यहाँ से, निकल।
5: नहीं अभी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हुआ क्या है पर मुझे ये तो बताओ पहले, अभी समझो ना मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा मत करो अभी। मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी, कैसे कहाँ रहूँगी, प्लीज अभी मेरे बारे में सोचो, मत करो ना, प्लीज ऐसा मत करो।
4: तुम जैसी बांझ औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से।
5: नहीं अभी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो अभी, प्लीज ऐसा मत करो।

0: थैंक यू सो मच ऑफिस से घर छोड़ने के लिए, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे, सच में।
1: अरे नहीं, थैंक यू सो मच तुमने मुझे अलाउ किया बल्कि अपने आप को यहाँ तक छोड़ने के लिए।
0: ओके बाय।
1: ओके बाय बाय, टेक केयर। रुको रंजना, रंजना, अरे रुको रंजना, रुको रंजना, कुछ बात करनी थी तुमसे। रंजना वैसे तो मुझे लंबी बात करने की आदत नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं, बस रंजना विल यू मैरी मी?
0: आशीष तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम जानते हो ना मैं शादी नहीं कर सकती। अगर हमने शादी कर ली तो हम फैमिली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत आए।
1: देखो रंजना, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हाँ या ना में जवाब दो प्लीज रंजना, प्लीज।
0: ऑफ कोर्स यस आशीष, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें मना कर भी नहीं पाऊंगी।

0: अरे रंजना, तुम ठीक हो? क्या हुआ, इतनी थकी थकी लग रही हो?
1: कुछ नहीं, सब ठीक है।
0: अरे कुछ नहीं कैसे नहीं, तुम्हें देख के ही पता लग रहा है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम देखो इतना लड़खड़ाती हुई चल रही हो। अरे पहले बैठो तो सही, बैठो यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है?
1: पता नहीं, बस एक हफ्ते से कुछ थकान सी महसूस हो रही है। ऐसा कुछ मतलब अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ मैं। चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ कमजोरी सी भी लग रही है। शायद गर्मी का महीना है ना, इसलिए हो रहा होगा।
0: अरे एक हफ्ता हो गया और तुमने मुझे एक हफ्ते से बताया भी नहीं। रंजना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पागल हो। चलो डॉक्टर के पास, तुम पागल हो, जल्दी चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ।
1: डॉक्टर के पास? नहीं नहीं आशीष, डॉक्टर के पास क्यों जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास।
1: नहीं आशीष, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी थोड़ी सी दवाई खाऊंगी और फिर ठीक हो जाऊंगी।
0: अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि चलो डॉक्टर के पास। अरे जल्दी चलो, जल्दी उठो, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। रंजना, रंजना, अरे रंजू।
1: अरे आ गए तुम?
0: हाँ रंजू आ गया, ये लो पकड़ो।
1: आशीष, ये क्या है आशीष?
0: तुम खुद ही खोल कर देख लो ना।
1: ये तो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है।
0: हाँ रंजना हाँ।
1: यानी कि आशीष, मैं माँ बनने वाली हूँ।
0: हाँ रंजना बिल्कुल, तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो।
1: पर ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं तो बाँझ हूँ।
0: रंजना पुरानी बातें रिपीट मत करो बस।
1: लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गलत है, मैंने पिछले 3 सालों से कभी कंसीव किया ही नहीं, अब कैसे?
0: रंजना तुम कभी भी बांझ नहीं थी। ऐसे कमजोर लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं। तुम कभी भी बांझ नहीं थी।
1: लेकिन?
0: अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो होना था वो हो गया। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या फिर बेटी?
1: बेटा। और तुम्हें?
0: बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: एफएम मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान, उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हां, हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया, या यूं कहें न्योछावर कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था। इनके बारे में आज मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस महापुरुष का जन्म आज है, यानी 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास था। आपके पिता कर्मचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई दी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर आप वकालत करने इंग्लैंड चले गए। वकालत करके लौटने पर वकालत आपने प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देख आप बड़े दुखी हुए, परेशान हुए। उनमें राष्ट्रीय भावना जागी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के उच्चादर्शों एवं सत्य के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा और वे हमारा देश छोड़कर चले गए। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किया, उन्हें हरिजन नाम दिया। भाषा जाति और धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रयत्न किया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। सूत कातने, सब धर्मों को आदर से देखने और सत्य अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वो देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आजादी के पश्चात देश के दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस बात का उन्हें दुख बहुत पहुंचा। हमारा दुर्भाग्य था कि इस प्रकार के नेता का मार्गदर्शन हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पा सके। और नाथुराम गौड़से नामक व्यक्ति की गोली से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। एक भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा हमारे बीच से चला गया। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके आदर्श सिद्धांत हमें सदैव याद रहेंगे। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और साथ ही जो उनकी बताई हुई बातें हैं, जैसे स्वच्छता की बातें, और यही वजह है कि स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। और हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि साफ सफाई में ही ईश्वर का वास होता है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। चलिए सुनते हैं एक भजन जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, वैष्णव जन को।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम यादें बापू गांधी की।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
2: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
1: जी बापू।
2: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
2: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
1: मजदूर रहेंगे उस
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
1: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
2: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सर।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साला लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी।
1: बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

यादें बापू गांधी की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार उस्ताद अमजद अली खां। लेखक हामिदुल्ला अफसर। कलाकार परवेज गौहर, शालिनी सिंह, वैभव श्रीवास्तव और किशोर साही जानी। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंडो और शानू मुक्सीम। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन के संस्मरणों पर आधारित NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक बहुरूप गांधी से संकलित प्रेरक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनिए कार्यक्रम नीलाम वाला।

0: गांधी जी की चलती तो वह कानून बना देते कि न तो उनको कोई महात्मा कहे न कोई उनके पांव छुए। मगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ने वाले अपार जनसमूह को रोकना वैसा ही कठिन था जैसा समुद्र की लहरों को। देश के काम से उन्हें देश भर में जनता के बीच घूमना फिरना पड़ता था। जहां जहां वे जाते, चाहे गांव हो या नगर, लोग अपार श्रद्धा से और प्रेम से उनका स्वागत करते। उन पर फूल माला चढ़ाने के लिए, जड़ाऊ पेटियों में रखकर मानपत्र भेंट करने के लिए, रुपये पैसे और गहने उन पर न्यौछावर करने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी। गांधी जी उनके प्रेम से तो प्रभावित होते थे, परंतु उनको इस बात से बहुत दुख होता था कि जिस देश में लोगों को भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता और औसत आमदनी 3 पैसे प्रतिदिन से भी कम है, वहां इतना धन फूल मालाओं, अभिनंदन पत्रों और स्वागत समारोहों पर बर्बाद किया जाए। वह बार बार लोगों से कहा करते थे कि इस तरह पैसे को बर्बाद मत करो, परंतु लोग सुनते ही नहीं थे। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि गरीब दुखियों की सेवा के लिए धन इकट्ठा करने में जनता के इस उत्साह का प्रयोग क्यों न किया जाए। इसकी तरकीब उन्होंने यह निकाली कि उनको भेंट में मिलने वाली चीजों को नीलाम किया जाए। बस गांधी जी नीलाम वाले बन गए, और नीलाम भी वह इस ढंग से करते कि पेशेवर नीलामियां भी उनसे मात खा जाएं। जब फूल माला चढ़ाने का क्रम खत्म हो जाता तो मंच पर से वह लोगों से कहते, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां तो यहां है नहीं जिनको मैं ये फूल मालाएं दे देता, फिर मैं इनका क्या करूं? क्या कोई इनको खरीदेगा? इसके बाद वह एक एक माला हाथ में उठा लेते और नीलाम की बोली शुरू करते,
1: 2 रुपए, 1 बार, 3 रुपए, 5 रुपए, 1, 1।
0: इस तरह से वह बड़े मजे से बोली बढ़ाते जाते। उनके हाथ से नीलाम होने वाली छोटी छोटी और न टिकने वाली चीजों को, एक संतरा या एक माला को भी लेने के लिए लोगों में बोली बोलने की होड़ लग जाती। कभी एक माला के 30 रुपए लगते तो कभी 300 रुपए तक बोली चली जाती। गांव में भी लोग बोली बोलने में पीछे नहीं रहते थे। एक बार गांधी जी ने एक सुंदर नक्काशीदार डिब्बे को हाथ में लेकर कहा,
1: इसका दाम 250 रुपए है। नहीं नहीं, मैं भूल से कह गया, इसका दाम 75 रुपए है।
0: जब किसी ने 300 रुपए की बोली बोली तो गांधी जी ने कहा,
1: 300 रुपए, 1, 300 रुपए, आओ भाइयों बोलो, इससे पहले मैंने इसी तरह का डिब्बा 1000 रुपए में नीलाम किया।

प्रेरित करने का एक बहुत निर्दोष तरीका है। और यह भी याद रखिए कि जो लोग मेरे इन नीलामों में बोली बोलते हैं, वे केवल मुझे खुश करने के लिए ही इतनी ऊंची बोली नहीं लगाते। ऐसा कम ही होता था कि उनके नीलाम में बोली ऊंची न चढ़े। उन्होंने एक नींबू को 10 रुपए में, सूत की एक माला 201 रुपए में, सोने की एक तकली को 5,000 रुपए में और एक जड़ाऊ पेटी को 1,000 रुपए में नीलाम किया। एक बार एक संस्था का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने तसले और कन्नी को नीलाम कर दिया और इससे उन्हें 1,000 रुपए मिले। एक बार ऐसे ही नीलाम करते समय गांधी जी ने एक छोटे बच्चे की ओर बांह बढ़ाई। बच्चा गले में सोने का तावीज पहने था। बच्चे की मां ने बच्चे को गोद में उठाकर उनके पास कर दिया। गांधी जी ने बच्चे को प्यार से थपथपाया, उसके गले से सोने का तावीज उतार लिया और उसे नीलाम कर दिया। एक सभा में गांधी जी ने घोषणा की, मेरे पास अंगूठियों का अक्षय भंडार है, मैं उन्हें बेचना चाहता हूं। एक अंगूठी जो पहले 3 बार नीलाम की जा चुकी थी फिर नीलाम पर चढ़ाई गई और अंत में 445 रुपए में बिकी। इस अंगूठी का वास्तविक मूल्य करीब 30 रुपए था। एक बार उनकी एक सभा में लोगों ने जो दान दिया उसमें नोटों, चांदी और तांबे के सिक्कों के बीच 1 कौड़ी भी मिली। गांधी जी ने कहा कि यह कौड़ी सोने चांदी के सिक्कों से भी मूल्यवान है, जिसने इसे दिया उसके पास शायद कुछ देने को नहीं था और उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और वास्तव में वह कौड़ी सोने की कौड़ी से भी अधिक कीमती साबित सिद्ध हुई। एक आदमी ने उसे 111 रुपए में खरीदा। दौरे, काम के बोझ और लगातार जटिल समस्याओं की उलझनों के बावजूद गांधी जी की जिंदा दिली और सहज बनिया वृत्ति में कोई अंतर नहीं आता था। 78 साल की उम्र में हिंदू मुस्लिम तनाव और सांप्रदायिक दंगों से व्यथित गांधी जी ने बिहार का दौरा किया। दंगे से पीड़ित मुसलमानों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया और जो गहने उन्हें भेंट में मिले उन्हें नीलाम करके और रुपये जमा किए। गांधी जी के पास अपनी कोई धन संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अकिंचन आश्रमवासी का जीवन अपनाया था। एक बार एक सार्वजनिक कोष में देने के लिए उनके पास सिर्फ तांबे का 1 पैसा ही जुड़ सका। इस पैसे को उनके एक भक्त ने 500 रुपए में खरीद लिया और मूल्यवान यादगार के रूप में अपने पास रखा।

बहुरूप गांधी। इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम नीलाम वाला। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुद शर्मा, आलेख अनु बंदोपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर अलका सिन्हा, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहायक दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरू।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना, और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
2: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है वो एक यंग देश माना जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है
1: जी,
2: इस संख्या के द्वारा। तो और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 1,71,000 सुसाइड हुई
1: जी।
2: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
1: यस जी,
2: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
1: जी, जी।
2: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
1: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राबता, और ये राबता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूं, प्रेशर में हूं, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे।
0: जी।
1: तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती है नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ, तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो की वर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन,
0: जी,
1: राइट,
0: जी।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं,
0: भूल चुके हैं,
1: और हम भूल चुके हैं। तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी जिंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ All your impurities which are there in your mind.
0: क्या बात?
1: आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगर अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं तो आईपैड, आईपैड छोड़ते हैं तो लैपटॉप, लैपटॉप छोड़ते हैं तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस हैं कि कहीं पे वो एक पॉज लेना भूल गए हैं. तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. मैम आपकी बात को मैं समझ गया और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से. और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा. सो लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय. इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है. सो कहीं जाएगा मत. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है. जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूज़िक की आवश्यकता होती है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. प्रोग्राम है राबता.

जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है। और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और राब्ता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं। ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना आम भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं

0: कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी, बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम, मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें। और वाकई आपने इस सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बार-बार आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैम, थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात करें, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है,
0: please,
1: अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है,
0: जी जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है, और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी, या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से, या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है, और अगर कहा जो है वो गहरा है, तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है, तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज़ मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट, वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड़ प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या ही फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप जरूर बातें साझा करिएगा जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे जरूर बात करिएगा क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे जरूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपटन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल दे।

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सुना सुना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं। बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो कहते हैं कि खुदा की, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ, जैसे आपने कहा, पॉजिटिविटी लेकर आ पाए, तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल।
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना। और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा। मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इको सिस्टम से जुड़े होने के हम लोग अब एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात कर रहे हैं इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, के इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत बड़ा चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि

यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। मेरा मानना ये कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी जरूर। कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी जरूर। हाँ जी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने ये भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के जरिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से, तनाव देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन है और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि ये जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस जो नेगेटिव कॉनोटेशन है उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल एज ए पेरेंट, और ऐसे नहीं है ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसा रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्जाम दिया शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट एज अ गार्जियन इफ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे, तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता था। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल, बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनकी बात को सुनें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड, हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी. और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पाठ है वो सुनाया गया और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है और वो किया गया. और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है. तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था. तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे. तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें. उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा. दूसरी चीज़, आप I'll just take 2 more minutes to wind up. जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे. दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 minutes नूडल, 30 seconds ऑफ यूट्यूब शॉर्ट, सब कुछ तुरंत अभी. तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी. और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है. तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था. और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी. तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था. तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो. तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है. और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई. जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए. और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन किए गए. तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं खाया था, उनके स्कोर काफ़ी बेहतर थे उन बच्चों के कंपेरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे और तुरंत दे गिविन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस. तो क्या इसे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स. संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय. Right, that is from darkness to light. Asto ma sadgamya. Let noble thoughts come to us from all sides. तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से. कोई ना कोई हमें मिलेगा, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे।
0: जी जी
1: जी, तो बहुत ज़रूरी है कि उस निगेटिविटी को दूर रखकर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा कुछ दो चार बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो दो मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आग बंद करके बैठे, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठे, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था। क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं। और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी। अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूं। और बस लिसनर्स हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए। और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए। अदरवाइज कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आस पास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं। तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
0: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम। राब्ता कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करेगा 0120404060205 पर, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का।

दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: छत पक्षियां रंगादी, धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया,
2: अपने धंधे की फितरत समझिए। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: है बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

तू चक ता सही, तू चक ता सही, ए नाम तेरा ही लेंदा रहेंदा, तू सुन ता सही।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।
7: सुनो भाई,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: आज मैं तारा अप्पा को काट कर पूरे घर में

0: नहीं कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग

0: की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूं और मैं स्कूल में पढ़ती हूं। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियां पढ़ती हूं, घर पर गेम्स खेलती हूं। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में सुनो शारदा।

0: 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: सुनो शारदा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
9: अकड़ी पकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
10: दिकीरो दिकीरो।
11: लेट्स गो बॉयज।
12: फील द पंजा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो

स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि

कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
0: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहना है महात्मा गांधी का। दृढ़ संकल्प और सरलता के प्रतीक देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी की जयंती पर सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से कोटि कोटि नमन।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
3: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
2: वो
3: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या क्या हो बेटी?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
3: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटी, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है?

बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें? वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है? राम राम दो, असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।